0: বাবু, এ বাবু, কাল মনীষ মেডিকেল মে যাইস তো?
1: মই নাই যাই, উহা আপন অনুহার বিগার কে ঘর সে বাহির নাই নিকরছু।
0: উহে মারে তো তুহিন উহা পাঠাই দো। ইয়া হেল ই পত্রিকা মে লিখাল বা মনীষ মেডিকেল মে আব ছালা সম্বন্ধী সমস্যা রহল বিরামী হুকরন বড়িয়া ডাক্তার হই সে উপচার হুই তাই তোর সমস্যা ফেন আস্তে বা জৈবে তো সমাধান হুই যাই।
1: এ হো দাদু, অপন অনুহার বিগার কে পরিশান রহু তব তো মই অব্বিহি যাইম।
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरुरी सूचना।
4: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
0: तपसिल
4: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी,
0: बैंकको सक्कल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी,
4: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
0: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति,
4: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
0: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 0915601122 सम्पर्क गर्नुहोला।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित लाभग्राही स्वयं तपसिल बमोजिमको नवीकरण शिविरमा उपस्थित भई भत्ता नवीकरण गर्न गराउन हुन अनुरोध छ।
5: शिविर सञ्चालन हुने स्थान
4: वडा नम्बर 3 को कार्यालय साउन 26 देखि 28 गते सम्म,
5: वडा नम्बर 5 को कार्यालय साउन 29 देखि 31 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 6 को कार्यालय भदौ 1 गते देखि 3 गते सम्म,
5: वडा नम्बर 7 को कार्यालय भदौ 4 देखि 6 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 8 को कार्यालय भदौ 7 देखि 9 गते सम्म
5: र वडा नम्बर 9 को कार्यालय भदौ 10 देखि 11 गते सम्म।
4: सबै वडाहरूमा शिविर सञ्चालन हुने समय बिहान 8 बजे देखि साँझ 5 बजे सम्म।
6: याद गर्नुहोस्, 60 वर्ष उमेर नपुगेका विधवा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले अर्को विवाह नगरेको सिफारिस र अपाङ्गता भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको हकमा अपाङ्गता परिचय पत्र अनिवार्य साथमा लिई आउनु पर्नेछ।
4: थप जानकारीको लागि टीकापुर नगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालय सम्पर्क नम्बर 9845008888, 9845015556 र 9846134434।
5: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाऊ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाऊ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान के ना झोला नहीं आना से कठुही
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोफ राइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि
4: 11 प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पतालमा उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
5: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोर्नीको दूरबीनबाट शल्यक्रिया
4: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीनको माध्यमबाट पाठीघरको शल्यक्रिया सेवा
5: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जनद्वारा विभिन्न किसिमका शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीनको माध्यमबाट पेटको शल्यक्रिया सेवा
4: जनरल फिजिसियन विशेषज्ञ सेवा
5: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
4: दन्तरोग सेवा
5: मृगौलाका बिरामीका लागि डायलिसिस सेवा
4: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
6: हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार
4: र सिटी स्क्यान सेवा
5: गम्भीर बिरामीका लागि भेन्टिलेटर सहितको आईसीयु एचडीयु सीईओएनसी र बालबालिकाका लागि एसएनसीयु सेवा
4: रोग पहिचानका लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलोजी हिस्टोप्याथोलोजी माइक्रोबायोलोजी पारासिटोलोजी सेरोलोजी इन्डोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल भिडियो एक्सरे अल्ट्रासाउन्ड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पतालका अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
5: फार्मासिस्टद्वारा फार्मेसी सेवा 24 घण्टा
4: इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
5: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
4: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
5: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
4: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
5: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091560488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97628435 उपेन्द्र शाह 98 21 60 24 57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरीको फोन नम्बर 98 57 85 63 22 खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पतालको क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।

0: छिप छिप फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 0 26
2: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: क्या ले लीते?
1: एंसल पैक किन लीते?
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी।
0: कैश फिर तक ले लीते? कैश फिर तक ले लीते?
2: एंसल पैक किन लीते? सर लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहाँ उपकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपनी खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारे पात्रो नेपाली पात्र मे सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। टीकापुर में खाना पकेना एलपी गैस के अभाव, उपभोक्ता हुकरण में समस्या, गैस के अभाव खेपतिर अलग विषय में सांसद हुकरण संगे सरकार के ध्यान आकर्षण। विद्यालय के शैक्षिक विकास के लग व्यवस्थापन समिति सक्रियता आवश्यक, व्यवस्थापन समिति जिम्मेवार बारे जानकार हुई पन्ना, शैक्षिक क्षेत्र के नागरिक हुकरण के कहाई। अछामो बाजुरा में चार

0: अब ग्यास उपलब्ध नै हो, डिलरमा ग्यास नै हुल्पाछे उपभोक्ता हुँक्रा ग्यास पैना नै सकलमै टिकापुर के मनकामरा ग्यास के डिलर रहर न्यू एब्रिला टेरस उपभोक्ता करीब 400 खाली सिलिण्डर जम्मा कर सकल जानकारी दिलेबा नै चार दिन आगे नेपालगंज ग्यास लेना समेत गयल गाड़ी अबिन फे लौटल नहीं हो। वो हमारे विक्रेता उपभोक्ता दोनों मारमा परल डीलर के संचालक गौरी देव कोटा के कहेबा। भेर गैस के विक्रेता राजू चौधरी फे मार्ग से फे गैस कम उपलब्ध हुए कोर्ट से गैस अभाव देख परल बटोले बाटन। उसका सैपाल गैस के विक्रेता पुष्पराज देव कोटा फिर समेत एक महीना से टीकापुर के मांग अनुसार गैस नहीं लग बटेकी बाटे। इस समय में गैस नहीं लग कारण यहाँ उपभोक्ता हुकरण गैस पुगेना समस्या होती रहलवा। सरकार आयल निगमो गैस कंपनी हुकरा गैस के अभाव में बाटे असि के अपना हुकरा समय में गैस नहीं पैले कोर से विक्रेता देवकोटा गुनासो करल बाटे। गैस अभाव नहीं हुए से फिर गैस कहाँ गेल त नना यहाँ एक महीना से लेके उपभोक्ता हुकरा गैस पैना छोड़ल बाटे। अभी में पर्याप्त मात्रा में गैस कबाई कहना बात में एक नहीं रहलक। 200 सिलेंडर गैस माग पाछे 50-100 सिलेंडर गैस के उपलब्ध हुई रहलक बा एकर कारण यहाँ ढेर गैस के समेत अभाव देख पड़ल बटवेले बाटे। टीकापुर में भेरी रेडियंट मनोकामना और सैपाल गैस की डीलर रहल बा। राष्ट्रीय सभा के सांसद हुकरा से देशभर जनता हुकरा खाना पकेना गैस के अभाव खेप्न पर्ति अलग विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करी थी जवाब मांगल बा। सभा के कालिक बैठक में सांसद हुकरा घंटौ लाइन लाग के बैठल सही समेत गैस नहीं पैलक और भूखले बैठे पर्ना अवस्था अलग कहती नागरिक में अब सम भोगे पड़ल समस्या में प्रश्न समेत मां तत्काल समाधान करना सरकार से ध्यान आकर्षण हुई पड़ना कहलवाटे। सांसद उक्र सरकार से गैस के समस्या नहीं हो कहना करलक मनो समेत जनता घंटौ लाइन में गैस में समेत नहीं पाके बैठे पड़ना अवस्था रहल कहती समस्या समाधान के लग सरकार है रूलिंग करना अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल समक्ष मांग पेश करलवाटे। असाम और बाजुरा में चार पालिका जोड़ के बड़ी मालिका रामरोशन वन क्षेत्र के समेत संरक्षण वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा कर गिलवा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह बाजुरा जिला के बड़ी मालिका क्षेत्र हो असाम जिला के रामरोशन क्षेत्र है समेत न करके बड़ी मालिका रामरोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा करल बाटे। काली धनगढ़ी में एक कार्यक्रम बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश के वन एन 2077 के दफा 26 के एक बमोजिम बाजुरा जिला के बड़ी मालिका क्षेत्र व असाम जिला के रामरोशन क्षेत्र में समेत गिलक करके समेत बड़ी मालिका रामरोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा कल के हो। मुख्यमंत्री शाह के अध्यक्षता में साउन 19 गते बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक से उ क्षेत्र है वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा करना निर्णय कर दिलवा। खोजखर में एक घड़ी विश्राम पास फिर से भी सुनते रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर नगर पालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम संबंधी सूचना।
2: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
1: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
3: यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
4: तपाईँ एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
3: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ
4: अनि सुधार घेरामा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्के काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त, यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
3: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिछस् त यार, अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
1: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। भागीरथी

0: मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको धड्कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ ईसीजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नजिकै टीकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-685-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
1: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। विद्यालय के शैक्षिक विकास और गुणस्तर अभिवृद्धि करदा प्रत्येक विद्यालय में व्यवस्थापन समिति गठन हुई। शिक्षा नियमावली तथा शिक्षा एन से विद्यालय व्यवस्थापन समिति के काम कर्तव्य और अधिकार के व्यवस्था कर रसफेन। अधिकांश विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति ही विषय के बारे में जानकारी नहीं रहल बता गया। विद्यालय व्यवस्थापन समिति के काम कर्तव्य अधिकार के बारे में जानकारी करेना जानकी गांव पालिका के शिक्षा शाखा प्रमुख धर्मानंद कपाड़ी के कहेबा। विद्यालय के शैक्षिक वातावरण निर्माण करना और विद्यालय में गुणस्तरीय शिक्षा कायम करना शिक्षक कर्मचारी संघ विद्यालय व्यवस्थापन समिति फे हो। मनो अधिकांश समिति सदस्य नई समेत विद्यालय में नियमित निगरानी करना विद्यालय के गुणस्तर के लाग योजना बनाई पर्ना लागू करे पर्ना कहना बात था नहीं हो। विद्यालय में बोलाइल बेला समेत जैना और समेत कलक ठाव में हस्ताक्षर करना पागिल बा। अपना हुक्रा जैना बुझना और सम विद्यालय में समेत हफ्ता दिन में जैना और अभिभावक हुकन संगे भेटघाट करते रलक बटवाई थी। शक्ति देवी आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष विष्णु चौधरी के कहाइबा। उसको विद्यालय में बोलायल समय में विद्यालय जैना अपना उक्र समय मिला के हफ्ता दिन में विद्यालय निगरानी करती रलक त्रिभुवन मावी बटनपुर के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष हीरालाल चौधरी के कहाइबा। उस खड़ग स्मृति मावी टीकापुर के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष तर्कराज रेग्मी विद्यालय व्यवस्थापन समिति के काम कर्तव्य अधिकार के विषय में अध्ययन करना आवश्यक देख बाटे। विद्यालय व्यवस्थापन समिति खासे आपन अधिकार क्षेत्र में समेत अध्ययन नै करला कोर्से विद्यालय प्रति चासो रखना ठाउ मजा भूमिका खेलना हो कलसे जहां समिति चासो देठ उहाँ हो शिक्षा कुकरण समेत करदर ही कहना सोच बा मनो ई विद्यालय समिति के खासे सक्रियता नै देख गेल कोर्से समस्या हुई रहल शिक्षा शाखा प्रमुख धर्मानंद कपाड़ी के कहाइबा। हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव कायम रहल बा। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार मनसून की न्यूनचापीय रेखा अब सर्दन स्थान के आसपास रहल बा। ई बेला मध्य प्रदेश के साथे कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना बा। लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई क्षेत्र में आंशिक मौसम बदलना मौसम सामान्यतया सफा रहना बा। मौसमविद के अनुसार अब कोसी और बागमती प्रदेश में कुछ ठाउँ गंडकी और कर्णाली के साथे यी स्थानमा समेत मध्यम खालको पानी पर्तिर लगभग आकलश लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक दुई स्थानमा हल्का पानी पर्तिभा आज विफेकदेन कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशकै हिमाली तथा पहाड़ी क्षेत्रमा साधारणतया मौसम बदलन भएकोले मधेस प्रदेश हो सुदूरपश्चिम प्रदेशकै तराई भूभागमा आंशिक मौसम बदलना अनुमान गरिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार दुपहरको रातके कोशी गण्डकी बागमती हो लुम्बिनी प्रदेशकै हिमाली तथा पहाड़ी भूभागमा कुछ स्थानमा मध्यम पानी पर्न सम्भावना भएकोले सुदूरपश्चिम प्रदेशकै हिमाली पहाड़ी क्षेत्रमा कम स्थानमा मध्यम खालको पानी पर्न सम्भावना बा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसकै अवसरमा टीकापुरमा सरसफाई करगिल बा दारिग्याङ तथा टीकापुरकी युवा हुङकरणकै संयुक्त आयोजनामा सरसफाई तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम करगिलेको टीकापुर नगरपालिकाकै समन्वय हो सहकार्यमा टीकापुरकै खड़क चोकसे लैके टीकापुर बस पार्क समकै छ लेन सड़क मा समेत बनाइल क्यारीमा सरसफाई तथा वृक्षारोपण गरिएको युवा सैनिकै टीकापुर स्थित के तमाम विद्यालय तथा क्याम्पस के विद्यार्थी सहभागितामा यस पहिले फेर गुलाब लगाके अलपत्र पर्लक क्यारी हे सरसफाई गरके दारी ग्याङ टीकापुरकै अध्यक्ष विष्णु रोकाया जानकारी दिएबाट वहाँ क्षेत्रमा खाली रलक स्थानमा वृक्षारोपण गरिगिल्वा टीकापुर नगरपालिकाकै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश अवस्थी देशमा हरेक कालखण्डमा युवा हुङकरणकै खेलल भूमिका महत्वपूर्ण रहल बटोइथी देश निर्माणमा प्रमुख आधारशिला युवा शक्ति रलक उल्लेख गर्नबाट खोज खबरमा फेन्से विश्राम पाछ फेरसेवी सुन्तिर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
2: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना
3: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ
2: तपसिल
3: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी
2: बैंकको सक्कल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी
3: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र
2: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति
3: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
2: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला
3: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर
4: बाबु ए बाबु काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त
5: मै नै जाइ उहाँ आफ्न अनुहार बिगरके घर से बाहर नै निकर्छु
4: उहे मारे तो तुहिन उहाँ पठाइदो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाए
6: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होइति रहल बा सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नम्बर 98600-71024 ओ 98046-77417
7: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
8: ग्रीष्म टेरेसमा पाइने सामग्रीहरू
9: नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो
10: हटब्याग थर्मस जर्किङ पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
11: ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588080।
1: विश्रामपछि फेरसे स्वागत बा। देशभर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा रेबिज विरूद्धकै खोपके चरम अभाव देख परल बा, जेकर कारण बेरमेहुक र उपचार नै पाके सस्ती खेप तिर्न बाध्यता बा। खोप अभाव के कारण तमाम विपन्न तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाके बेरमेहुक र निजी क्लिनिकमा महँगा शुल्क तिर्के खोप लगाइन बाध्य बाटेकलेसे कयौं जाने ज्यान समेत गुमाई परल बा। सम्बन्धित निकायसे खोप नियमित हो पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तत्काल पहल गर्न आवश्यक रहल चिकित्सक हुँक्रा बटैति बाटै। विशेष अदालत से सम्पत्ति शुद्धिकरण के मुद्दामा आरोपित व्यवसायी दीपक भट्ट सुलभ अग्रवाल हेठुनामा धर्ना आदेश देहलवा र अदालत के अध्यक्ष वासुदेव आचार्य हो सदस्य हेमन्त रावल के इजलास से बयान हो थुनछेक बहस पासे दोनों अभियुक्त हुकरन थुनामा पठाइन निर्णय गरेको हो। यही समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुरमा खाना पकाइने एलपी ग्यास के अभाव उपभोक्ता हुकरण समस्या ग्यास के अभाव खेप्ती प्रवृत्ति रलको से विषयमा सांसद हुकरण से सरकार के ध्यान आकर्षण। विद्यालय के शैक्षिक विकास के लक व्यवस्थापन समिति के सक्रियता आवश्यक व्यवस्थापन समिति जिम्मेवार बारे जानकारी पर्न शैक्षिक क्षेत्र के नाराज हुकरण की कहाई। असम बाजुरा के चार पालिका जोर के बड़ी मालिका रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा हो आज देश के कुछ भूभाग में पानी पर्न संभावना। नीता बक्लक थारू भाषक खोज खबर अत्रै हौरा समाचार 12 बजे मध्याह्न खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुदु। सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाप्त सुनते रवि राम राम।
12: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
13: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
12: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
13: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
12: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
14: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
15: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
16: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
15: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
16: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
17: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।
18: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सीतापुर नगरपालिका एक नम्बर वडा कार्यालयको वडावासी नगरवासीहरूमा हार्दिक अनुरोध।
1: जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, बसाई सराई, सम्बन्ध विच्छेद तथा मृत्यु दर्ता लगायतका घटना भएको 35 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा वडा कार्यालयमा दर्ता गरौं।
0: कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अघि वडा कार्यालयमा दर्ता गराएर मात्रै सञ्चालन गरौं। व्यवसाय दर्ता नगरेको भए तत्काल दर्ता गरिहालौं।
1: ढल वा सड़कमा व्यवसाय नगरौं। सार्वजनिक स्थलमा ढुङ्गा, माटो, बालुवा, गिट्टी जस्ता निर्माण सामग्री नथुपारौ।
0: घर वा पसलबाट निस्किएको फोहोर मैला जथाभावी नफालौ। चौपायालाई छाडा नछोडौ। सड़क छेउमा नबाधौ।
1: एक घर तीन बिरुवा अनिवार्य रोपौ। सबै प्रकारका करहरू समयमै भुक्तानी गर्नु दायित्व हो।
0: आफ्नो नगर सफा सुन्दर बनाउन आआफ्ना ठाउँबाट लागौ।
1: वडा कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सुझाव र गुनासो भए वडाको फोन नम्बर 091-560-877 र वडा अध्यक्षको फोन नम्बर 98-48-44-598 सम्पर्क गर्नुहोला।
0: एक नम्बर वडा कार्यालय, टिकापुर नगरपालिका।
2: बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे गुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना उनी ना पट्टा नि पैना त
3: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ।
2: तुहार बाटा स्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कन ल बाटी।
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98-684-41-208 98-486-39-261।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दे भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
1: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशानाटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 और 9846239261।
2: किजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल

0: ये बुढ़वक ढंग कब्बो फसल छान कर ज्वाला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोफ राइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
0: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
0: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417

0: कुनै प्रकारको रसायन केमिकल नमिसाइएको शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवनको अत्याधुनिक मिलमा उत्पादित शुद्ध तोरीको तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेडका प्रिमियम उत्पादनहरू।
1: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
2: कार्यक्रम मझेरी
3: मझेरी मझेरी
4: भैया ना करा रेडू बिगरी
5: नहीं का मम्मी टीकापुर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
2: थारू गीत के बहार प्रतिभा आने अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़े चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: हुक्का पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटी गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरा
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज
1: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल
1: छू वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417
6: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
7: ग्रीष्मा टेरेसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि संपर्क नंबर 98 49 85 18 08

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पियरी थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: इतनी छिटो आमा बन लगे तो सकि सब काम कर काम कर विदेश जानु के नगर्ने के झालमा जस्तो लाग्छ
4: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जै बो? पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना, कटा सुगुर बनेल बाट। अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना, कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषत हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: लेता ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते कैश फिर तक ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

जिरापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आने भाई छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामी विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाइस, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाग खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजीक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उग्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मलाप सम्रपात्र नेपाली पात्र मफी सुन्टी रहलवाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर में उपभोक्ता हित संरक्षण मंच करला कार्यक्रम की समीक्षा बजार अनुगमन निरंतरता देहपणा में जोट मंच की अध्यक्ष में विश्व सैन रोपड़मा पहिरो मृत्यु हुना के संख्या 4 भोल 8 जना अभिन बेपत्ता राष्ट्रीय सभा बैठक खाना पकाइना ग्यास के अभाव महंगी और कालोबजारी नियंत्रण करना सरकार के ध्यान आकर्षण ओ कांग्रेस पूर्व सभापति देवा 5 महीना पश स्वदेश लौटल बाट टीकापुर नगरपालिका के आर्थिक विकास शाखा प्रमुख रंजू आचार्य उपभोक्ता हित संरक्षण समिति संघ के सहकारी महिला कार्यक्रम बारे जानकारी दिलवाटी। वहां के केरा पकैना चैम्बर संचालन के लाख योजना बनला से फिर संचालन में आई नई सकल अब संचालन के लाख रानी जमरा कुलरिया सिंचाई योजना कृषि कार्यान्वयन इकाई संघ समय हुटी रहल बोटेलवाटी। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के वडा अध्यक्ष दीर्घ बहादुर ठकुला उपभोक्ता सचेतना के लागि स्थानीय सरकार एकलह केल नै हो के नै हुना अकरला व्यापारी के आफ्नो भूमिका निभा गर्न पर्ना वा उपभोक्ता फेर सचेत हुन पर्ना बोटेलोबाट टीकापुर नगरपालिका के वडा नम्बर 7 के वडा अध्यक्ष के प्रसाद न्यूबाने मञ्चकीय सहयोगमा बनला कि एक राजपत्रमा आइने सेक्लक चुनौती के रूपमा रलक अप ऐना दिनमा एन हालिसे राजपत्रमा प्रकाशित करकलाक पहल करना बोटिलोबाट उहाँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नागरिक के हितमा काम करती रह नागरिक के सहकार करके आगा बढ़ना बोटिलोबाट वडा नम्बर 4 के वडा अध्यक्ष लालवीर चौधरी मंच कला काम मजा हुईल बोटेटी नगरपालिका असंख निरंतरता देहपन्ना बजार में खाना पकाइना ग्यास के मूल्य फरक फरक हुईल पैल को मफी निगरानी करपन्ना बोटेट वडा नंबर 1 के वडा अध्यक्ष मोहन बिका उपभोक्ता हित मंच बेला बेला में पुनः तास्कीका के सन्दर्भ खबरदारी गर्न पर्ना बोटिलोबाट उहाँ महंगी स्वास्थ्य लगायत के क्षेत्रमा सचेतना फैलना कार्यकलक धन्यवादेठी वडा नम्बर 1 बजार क्षेत्र हुल फेर निरन्तर अनुगमन हुई पर्ना बोटिलोबाट टीकापुर नगरपालिका के निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताल उपभोक्ता के हितकेलाक नागरिक संघ व्यवसायी महत्वपूर्ण भूमिका खेल पर्ना उत्पादन कर्ना कृषक उपभोक्ता सचेत कराई पर्ना बोटिलोबाट अनुगमन समिति सदस्य रानी चौधरी सूक्ष्म तरीका में से अनुगमन करती रह बोटिलोबाटी वहां वड़ा में फे पसल के अवस्था दर्ता नई हुलक तथ्यांक संकलन कलक पसल में सामान मूल्य सूची धरना हसल्ला देना कलक जानकारी दिलवाटी नेकपा एमाले के नगर सचिव भानुभक्त जैसी ध्वनि प्रदूषण बचाओ ओ वृद्ध समस्या हुना हुलक इम ध्यान आवश्यक लग बोटेटी प्लास्टिक के बारे में अनुगमन हुई पर्ना बोटेलोट राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नगर सभापति रविन्द्र विष्ट टीकापुर बस पार्क के शौचालय ढल निकास टीकापुर पार्क के शौचालय के बारे में फिर अनुगमन आवश्यक लग बोटेलोट टीकापुर नगरपालिका के कर्मचारी अमृता रावल उपभोक्ता हित संरचना कार्यक्रम निरन्तर दिना सचेतना कार्यक्रम करना टोल विकास के संस्था लेके आघा बढ़ापना अर्ग्यानिक तरकारी संकलन केन्द्र तोक्ना आवश्यक लग बोटिलोट उहाँ तरकारी के मूल्य सूची धरना आवश्यक लग बोटिलोट टीकापुर नगरपालिका के लक्ष्मी लेखा अधिकृत ओट उपभोक्ता गुनासो सुन्न ठाउँ के व्यवस्थापन हुई पर्ना बजार अनुगमन के लाख योजना बना कि आघा बढ़ा पर्ना गुणस्तर चेक जांच के लाख योजना बना कि आघा बढ़ना आवश्यक लग बोटिलोट नागरिक समाज के अगुआ भीमराज चपाई बजार में बटशाला के मजा व्यवस्थापन नई हुलक एकरलाख निगरानी कर पर्ना बोटिलोट सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम संचालक समिति के पूर्व अध्यक्ष रंग अधिकारी बजार मफिया बध्योर पसल दर्ता नै हुलक सञ्चालनमा रलक सजिलो करके दर्ता प्रक्रिया के लाग सचेतना फैलेना हो तरकारीमा विषादी अत्याधिक प्रयोग हुटी रह सचेतना तनाव फैलेना आवश्यक हुलक बोटेलोबाट समीक्षा कार्यक्रम हो सहजीकरण गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव एकेन्द्र तिमिलसेना उपभोक्ता हित मञ्च मार्फत निर्माण हुलक एन निमाली के बारेमा जानकारी गरी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च के अनुगमन उपभोक्ता सचेतना हुना खर्च नै हो के नै हुलक लगानी हुलक बोटिलोबाट उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल टीकापुर नगर समिति के नयाँ नेतृत्व चयन करगिलवा बिहीबार हुलक तेस्रो अधिवेशन शेरबहादुर विष्ट के अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन कलबाट अधिवेशन अध्यक्ष
उपाध्यक्षमा गीता चौधरी, सचिव महेश्वर बहादुर, कोषाध्यक्षमा गौरी जैसी चयन कलबाट, सहक सदस्यमा रतनलाल चौधरी नर्दी बोर्ड, ओ शान्ति काफ्रेह चयन कलत, निर्वाचन समिति संयोजक भीम राम चपाई जानकारी दिलबाट। रोल्पाकी थवाङ गाउँपालिका पास कोटबारामा पहिरो जाके घर था बगरमा पुलक मृत्यु हुने संख्या 4 पुग्लबा, दुईजना गम्भीर घाइते हुलबाट, पहिरोमा अभिन 8 जना बेपत्ता हुलबाट, बुधबार रातकी अविरल वर्षाके कारण गाउँके उपर जंगल के खोल समस्या पहिरो, स्थानीय कमल बहादुर पुनमगरकी घर सहित गरीब 6 ठो घर हो बगर पुलकबा।

0: नेपाली कांग्रेसके पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा देशमा राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनेना हो विगतके विभाजन एवं विद्योस्थिके खाओ हाली निको हिनकी आग्रह आह्वान कलबाट जेएमजी आन्दोलनकै क्रममा सांगीतिक कार्यक्रम नपरकी खाइते हुलक पूर्व सभापति देउवा 5 महिनाकी विदेश उपचार पाछ बिहिबार स्वदेश लौट लगत एक विशेष सन्देश जारी गर्दै उहाँ आह्वान कर्लबाट आफ्न सन्देशमा उहाँ आफ्नो कुनो शक्ति प्राप्त करकलाग नै हो कि राष्ट्रिय एकता बलगर बनिना उद्देश्यकै साथ स्वदेश लौटलत स्पष्ट पर्लबाट पूर्व सभापति देउवा जारी कलक व्यक्त भएमा मुलुकै विद्यमान जटिल परिस्थिति समाधान गर्न सको राजनीतिक तथा प्रजातान्त्रिक शक्ति एकाकार हुइपनामा जोड़ देलबाट उहाँ स्वागत गर्न कांग्रेसकै कुछ नेता वा कार्यकर्ता विमानस्थल पुगल रहे। खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पाछ फेरसे विश्वन्त्रिय वि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै भो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
1: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहो र घूम जाए तो था पाए।
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541326।
4: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्म टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
5: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
4: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
5: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
4: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
5: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
4: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
5: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
4: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
5: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
4: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
5: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
4: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80008 र 9825-6377-72।
6: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
7: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808।
0: रामपाछा फेरसे स्वागत बा हुलक सेवा आधुनिक प्रविधि मैत्री ओ नागरिक मैत्री बनेना सरकारी कुरियर सेवा के रूपमा विकास गर्न अभियान तीव्र पहिलोबाट सरकारी कागजात तथा सामग्री ढुवानी संग्रहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र शैक्षिक प्रमाण पत्र लगायतकी सेवा नागरिकको घर दैनमा पुगेन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयल पाछ हुलाक सेवाके प्रयोग विस्तार हुँदै गइल बा नयाँ सरकार गठन पाछ मन्त्री परिषदकै पहिलो निर्णयमा कार्यान्वयनलक शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूची तथा सूचना तथा संचार मन्त्रालयकै प्रमुख 10 कार्यभित्र हुलाख सरकारी सामग्री ढुवानी सेवाकी रूपमा विकास गर्न लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल हुँदै रहल बा हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगिनीकी अनुसार हाल हुम्ला बाहेक क्षेत्र जिल्लामा सरकारी कागजात घरमा पुगेन योजना लागू होस्याकलो हुलसेफे हुला मफेक कारण के अन्तिम तयारी हुटिरहल्बा विभागके तथ्याङ्क अनुसार 2083 साउन 27 गतेसम्म 76 जिल्लाके जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 2,47,043 थान राहदानी हुला मार्फत धुवा निकल्नबाट यही मध्ये 8,669 थान राहदानी सेवा गरेकी घरदेनमा पुवाकी वितरण कलबाट वस्तुकरकै यातायात व्यवस्था विभागमा से प्राप्त 10,38,808 थान सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स सात प्रदेशकी लग यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुलाक मार्फत पुगेले चाहिँ 1,900 थान अनुमति पत्र सिधा घरदेनमा पुगेलबाट कर्णाली प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्र घरमा पुगेका सुर्खेत हुलाक निर्देशनालय प्रदेश सरकारबीच सम्झौता हो कि सेवा शुरू हो सिक्लसे फेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फेरि यस्तक सेवा विस्तार गर्न छलफल हुइटिरहल्बा वस्तक शैक्षिक प्रमाणपत्रकै लाख नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय हो जग्गाधनी पूजा तथा सरकारी कागजात धुवानीकेला भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागसँग सम्झौता हो कि सेवा सञ्चालनमा आशयकल्बा त्रिभुवन विद्यालयसँग फेरि सम्झौताकी तयारी हुइटिरहल्बा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकै 1,400 सिठो नमूना हो स्वास्थ्य बीमा बोर्डकै सामग्री समेत हुलाक मार्फत धुवा निकल्बाट हुलाक सेवा थप प्रभावकारी बनेना देशकै ठेगाना प्रणाली व्यवस्थित करपना हो सवारी साधन तथा सूचना प्रविधिकै साधनकै थप व्यवस्थापन आवश्यक रहलक महानिर्देशक पंगिनी बोटिलोबाट सरकार देशभरकै 50 हुलाक कार्यालयमा छनौट गरके स्मार्ट हुलाकै रूपमा विकास गर्न प्रक्रिया बढिलोबाट यस समाचारसँग खोज खबर ओराइल जिनसे भोलि खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फेरि फेक्छु यस समाचारसँग खोज खबर ओराइल जिनसे भोलि खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फेरि फेक्छु टीकापुरमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च कला कार्यक्रमकी मुख्य बजार अनुगमन कार्यपालमा मञ्चकी अध्यक्षमा विष्ट चयन रोल्पामा पहिरो मृत्यु हुने संख्या 4 पुगल 8 जना अभिन बेपत्ता राष्ट्रिय सभा बैठक खाना पकाइना ग्यासकै अभाव महँगी वा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारकै ध्यान आकर्षण वा कांग्रेस पूर्व सभापति देवा पाँच मिना बच्चा स्वदेश लौटुलबाट दिटा बुक्ला खोज खबर तह प्राविधिक मित्र दिपेन्द्र भट्टराई धन्यवाद दिटी अब बुक्ला खोज खबर से मैसिदा चौधरी बिदाइटु एकर पास 6 बजे के खोज खबर सुन्न सिक्दी सामुदायिक रेडियो टीका पुरा फेम सुन्ती रवि राम राम
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो 500 सुरु करल मने घर सिज्जा सेक्ल
2: अरे का करुरी बुढिया कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिल्बो नि करत का कैन हो का
1: मिस्तरान वर्जन हुकन घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुहाका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुवा बुढो हो ना कबु कहुर घुम जाए त थाहा पाए
3: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 51 43 26

0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयके अनुरोध।
1: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हौ क्रे सड़क के किनार में पशु चौपाया नै बान देवी सड़क किनार में माल वस्तु नै कुरा देवी साथे सड़क किनार में पशु चौपाया बान के ढुंगा बालुआ गिट्टी मल कुरा के दुर्घटना हुईले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुकरा लेह पर्ना बा।
0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालय लाइकपुर।
2: आफूले सञ्चालन गरेका व्यापार व्यवसाय आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता नवीकरण गराई कर तिरौं र सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ।
3: कर नतिरी व्यापार व्यवसाय गर्नु कानून विपरीत हो। व्यवसायी दर्ता नवीकरण नगर्ने र कर नतिर्ने नागरिकलाई वडा कार्यालयबाट दिइने सेवा सुविधा प्रदान गरिने छैन।
2: टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: स्पेशल पैक किन लीजिए।
1: जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एनसेल ऐप में क्लेम करी।
2: कैश फिर तक ले लीजिए, कैश फिर तक ले लीजिए।
1: एनसेल पैक किन लीजिए। शर्त लागू हुई। एनसेल नेपाल के लग।
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछा से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल?
1: अरे का करू री बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का।

0: कापी रहिथ कभी पेन्सिल रहिथ कबू झल फटा का आजिथ का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई या झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कपड़ा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कही एक आनल झोला दस का ट्रस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली। टीकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
1: टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको मिति स्थान र समयमा सञ्चालन हुने भएकाले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ।
0: तपसिल
1: वडा नम्बर 4 अस्नेरी सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 2 गते।
0: वडा नम्बर 5 मणिकापुर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 3 गते।
1: वडा नम्बर 2 विजयनगर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 4 गते।
0: वडा नम्बर 3 रामपुर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 5 गते।
1: वडा नम्बर 1 गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन भदौ 6 गते।
0: वडा नम्बर 1 एकता नगर कार्य समितिको भवन भदौ 7 गते।
1: वडा नम्बर 1 ज्योतिनगर सहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र भदौ 8 गते।
0: वडा नम्बर 9 ढुङ्गा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 9 गते।
1: वडा नम्बर 6 नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी भदौ 10 गते।
0: र वडा नम्बर 7 सत्ती सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 11 गते।
1: सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि।
0: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली का।

0: कितना ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते कैश फिर तक ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग

मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।